0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में

भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगे। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: श्रोते हो, सर्वोच्च, उच्च, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयात दाखल खटल्यांची माहिती, न्यायालयाने दिलेले निकाल, दाव्यांची सद्यस्थिती याची माहिती सर्वसामान्यांना ऑनलाईन देणारी व्यवस्था म्हणजे नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड पोर्टल। या पोर्टलवर जाऊन विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाकडून देण्यात आलेली माहिती अवश्य जाणून घ्या। याविषयी शंका प्रश्न असतील तर hod.ecourts@nic.in वर ईमेलद्वारे पाठवा। NJDG नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडचा जरूर उपयोग करा।
1: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या आपण ऐकू शकता।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दो।
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। DRDO ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
7: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री

0: मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
1: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं

0: बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है।

0: यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार मुंबई, सुबह के 8:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो मस्त मुंबई दिल का फसाना, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी इस घंटे की साथी माला के साथ। दोस्तों, आज का फसाना किसी मोहब्बत की दास्तान नहीं है, बल्कि उस खामोशी की आवाज़ है जिसे हमारा समाज अक्सर सुनकर अनसुना कर देता है। मेरा आज का सवाल कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे सीधे आपके जमीर से है। कभी सुना है आपने किसी लड़की के दिल की आवाज़ को? जब वो सात फेरों के सपने बुन रही होती है, तब उसके पीछे एक खामोश सौदा चल रहा होता है जो उसे पता भी नहीं होता। और आज बात उसी दर्द की, उस खामोश दिल की दास्तान की करेंगे हम आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम विवेक 1044 क्लोहर्ट्स के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर, और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। तो आप हमें लगातार सुनते रहते हैं 24/7। तो शुरू करते हैं मस्त मुंबई दिल का फसाना का ये पहला गाना।

जी हाँ, ये वो सपना है जो हर माता पिता देखते हैं। पता है मुंबई, जब कोई लड़की बड़ी होती है तो वो डोली के सपने देखती है, और उसके माता पिता भी सोचते हैं कि हमारी बिटिया बड़ी होकर किसी अच्छे से घर में जाएगी, किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी। लेकिन जब मंडप में कदम रखने से पहले सिर्फ रिश्तों को तराजू पर तोल दिया जाए और सपने टूट जाए तो मन चुप हो जाता है। दहेज की मार सिर्फ एक पिता की जेब पर ही नहीं पड़ती, उस बेटी के आत्मसम्मान पर भी पड़ जाती है। रिश्तेदारों का दबाव, समाज के ताने, और ऐसा लगता है जैसे बेटी कोई इंसान नहीं है, कोई सामान की तरह है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर सोचिएगा जरूर, क्या सच में बेटियां पराया धन होती हैं या वो अनमोल होती हैं? इस खूबसूरत से नगमे के साथ जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। और आज मस्त मुंबई दिल का फसाना बता रही है आपको आपकी अपनी दोस्त माला। तो सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, बेटियाँ इतनी ही प्यारी होती हैं और सभी माता पिता के लिए अपनी बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं। पंकज मोड़ हमें लिख रहे हैं कि दहेज की जो मार है सिर्फ माता पिता की जेब पर नहीं पड़ती, लड़की के मान सम्मान पर भी उससे ठेस पहुँच जाती है। अंजू अंधेरी इससे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो गाने सुनकर जो है थोड़ी भावुक हो गई हैं और उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं। वहीं ये मैसेज प्रमोद चिंचोलकर का हमारे पास आया है जो कह रही हैं कि बेटियाँ पराया धन तो होती हैं लेकिन माता पिता के लिए बहुत प्यारी होती है, इसलिए बेटी घर का बोझ नहीं, वो तो सबसे प्यारी बच्चियां होती हैं। बस इतना ही कह सकते हैं हम। ये कह रहे हैं प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से, और विजेंद्र घटोल अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ राम प्रजापति वसई से कह रहे हैं कि बेटियां हमारे हिसाब से बोझ नहीं होती लेकिन क्या करें, परंपरा जो है वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल बेटियों के साथ जो हो रहा है, कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी ना करें, दहेज सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कानून जरूर सही से बनाए जाने चाहिए। और ये मैसेज है श्रीधर मुजारकर का और इन्होंने हमें शुभ सकाल लिख भेजा है। रजनीकांत पाटिल बाड़वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं प्रदीप अनंत कृष्णन ने सुप्रभात और नमस्ते का मैसेज हमारे साथ शेयर किया है। प्रदीप जी, इतने बड़े बड़े मैसेजेस आप भेजेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। फिरोज सिकिन पुरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदन्या मनका में भी हमें सुन रही है डोंबिवली से। आर्यन सोमवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रकाश शिंदे प्रणव शिंदे जुड़ गए हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचाया है और नमस्ते भी कहा है। तो भाई आपको भी सुप्रभात। गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM। मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है दिल का फसाना, और दहेज से होने वाली जो दिल की बात है लड़कियों की, वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ बनी हुई लगातार मैं आपकी दोस्त माला। और जब जख्म गहरे हो तो इंसान टूट जाता है या वो दूसरों के लिए ढाल जैसा बन जाता है ताकि दूसरा वो ना झेले जो मैंने झेला। हमारी आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही जाबाज लड़की की है, जब समाज ने उसे कमजोर समझा तो वो उठ खड़ी हुई और वो एक NGO से जुड़ गई और इस दहेज सिस्टम के खिलाफ क्लब वो चलाने लगी। वो चुप नहीं बैठी, उसने अपनी खुद की तकदीर लिख डाली। और आपके आसपास भी कोई अगर ऐसी आवाज़ है तो हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर 8657661071, यानी कि 8657661071। इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और अपनी राय जो है इस बारे में ज़रूर साझा कीजिए। ऐसी आपकी दोस्त माला उम्मीद करती है कि ये उड़ान तो अब तो सभी माता पिता भर ही चुके हैं। ये जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये पिंजर फिल्म का गाना है, जसपिंदर नरूला, प्रीति उत्तम और अमय डले के साथ निहार भी इस गाने में शामिल है। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नगमा ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शनिवार की इस खूबसूरत से सुबह में। हालांकि बाहर का माहौल थोड़ा गर्म है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को थोड़ा ठंडा ठंडा बनाने की कोशिश हमारी तरफ से जारी है। आकाशवाणी मुंबई का ये जो चैनल है ये आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। और हमने आपसे आपकी राय मांगी थी आज के विषय पर कि भाई दहेज प्रथा जो है वो किस तरह तक, किस हद तक तोड़ देती है परिवार को। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पहुंच भी चुके हैं। अंजू जो है अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं और लगातार मैसेजेस हमें कर रही हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा गलत मानती हैं और चाहती हैं कि किसी भी माता पिता को अपनी बच्ची की शादी में दहेज नहीं देना चाहिए। वहीं गणेश पाटिल वाडवन से जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि भाई हम रोज सुनते हैं ये कार्यक्रम, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज महोड़ जो हैं वो भी सुन रहे हैं, प्रमोद कारखानिस पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे साथ में हैं उनके, वो कह रहे हैं कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो तो घर का गौरव और साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके होने से ही घर का आंगन चहकता है, महकता है, खुदा की रहमत घर की शान होती है, बेटियां माता पिता का मान होती है, जो समझते हैं इन्हें बोझ वो नादान है, बेटियां तो घर की असली मुस्कान है, आंगन में जिसकी गूंजे हंसी वो जन्नत का नजारा है, बेटी का होना तो रब का सबसे प्यारा इशारा है। इसलिए जिस घर में बेटियां हो वहां हमेशा रौनक बनी रहती है। और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे स्टूडियो में भी हम फील कर पा रहे हैं कि किसने प्यार के साथ आप हम तक अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं और इस विषय पर हमसे लगातार बात करें। मिलेश गजानन राउत, श्रेय राउत, आर्य राउत टिघरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्नेहा वर्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई बेटियां माता पिता के घर में सेफ होती हैं, शादी ना करें यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार हाल ही के दिनों में सुनने के लिए आ रही हैं वो बहुत ही जो है दिल को तोड़ देने वाली होती हैं। अवधेश मौर्य जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दत्तात्रेय आदत वेलापुर से, और राम नितिन ढोकड़े पूनम साथ में, तनुष और भी जुड़े हुए हैं, संग्रामपुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये जो मैसेज है ये अंजलि पाटिल की तरफ से हम तक पहुंचा है, वो कह रही हैं बेटियां प्यारी होती हैं, अनमोल होती हैं और गाने उन्हें पसंद आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इसी तरह आपको सारे गाने पसंद आते रहेंगे। तो ससुराल भेजना है कि नहीं बेटियों को ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा, और डिसीजन लेते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्यार की अहमियत पैसे से बहुत ज़्यादा होती है।

चाय पे बुलाना तो ठीक है, लेकिन जांच पड़ताल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, साथ बनी हुई लगातार आपकी दोस्त माला। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना, और दिल का फसाना में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम पर जिसे हम सभी दिल से खत्म करना चाहते हैं, और सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां जिस घर में भी जाएं हमेशा खुश रहें। तो अंजू जो है अंधेरी से ये हमें लिख रही हैं कि उनकी एक बिटिया तो उनकी सेम सोसाइटी में रहती है और दूसरी जो बिटिया है वो USA में रहती है और वो डॉक्टर हैं और बहुत खुश हैं, और ऐसी ही कामना वो सारी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए करना चाहती हैं, और कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। पंकज महोड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कभी कभी जो लोग ससुराल में दहेज के लालच में बेटियों को परेशान करते हैं और उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। प्रमोद चिंचोलकर भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश शिंदे भी कह रहे हैं कि आज का जो विषय है उसने और गीतों ने हमें इमोशनल कर दिया है, शुक्रिया आपका, क्योंकि वो खुद भी एक बेटी के पिता हैं इसलिए शायद ज़्यादा इमोशनल हो गए। महेश बोहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजमेर से ये हमें सुन रहे हैं और वो हमें नमस्कार भी करें, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बेटियां माता पिता पर कभी बोझ नहीं होती ऐसा उन्होंने लिखा है, लेकिन समाज और दुनिया की रूढ़िवादी जो सोच है वो बेटियों को बोझ समझने पर मजबूर कर देती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आजकल तो बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सर ऊंचा करने वाला माना जाता है, इसलिए हम सबको इस सोच को बदलने की पहल कर देनी चाहिए, कर ही दी है बहुत सारे लोगों ने, और ये प्रोग्राम बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से, विजेंद्र घटोल जो हैं भी जुड़े हुए हैं, भागेश आर पाटिल भी कार्यक्रम सुन रहे हैं वाड़वन से, शुभ लक्ष्मी वस्तकार भी जुड़े हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए किसी भी माता पिता को अपने बेटे के लिए, और माता पिता उन्हें भी नहीं देना चाहिए जिनकी बेटियां किसी के घर जा रही होती हैं। तो भाई आप सभी का प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने के लिए और ही सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त मुंबई 9:38 और ठीक 52 सेकंड हो चले हैं, माला आपके साथ है और भी रहूंगी आपके साथ, और आपको बताते हैं कि बदलाव बातों से नहीं तेवरों से आता है। हमारी जो एक खास दोस्त हैं जो हमें सुन रही हैं वो गलियों में चौराहों पर लड़कियों के साथ मिलकर नाटक करती हैं, नुक्कड़ नाटक करती हैं और एक ही सुर में चिल्लाती हैं मैं दहेज नहीं दूंगी, और जो लोग दहेज लेते हैं उन्हें भी दहेज लेने से रोकूंगी और लोगों को समझाऊंगी कि बेटियों की शादी में दहेज ना दें, और इसकी वजह से रूढ़ियों की दीवारें हिल जाती हैं। कितना दम है ना इस वाक्य में, ये जिद है अपने हक की, अपने वजूद की, और हम सभी को इसका प्रण करना चाहिए कि इस जिद को आगे बढ़ाते जाना चाहिए ताकि बेटियां जब भी दूसरे घर जाएं तो खुश ही रहें।

तो भाई आजकल तो ये बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए बेटियों को, क्योंकि उनका ये घर भी जो है अपना ही होता है, और बेटियां जो हैं वो कभी पराई नहीं होती, हमेशा दिल में, जहन में, और माता पिता के तो खास तौर पर दिल की धड़कन में बसी होती हैं। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना हम सुना रहे हैं बेटियों का। आज साथ है आपके आपके दोस्त माला, जैसा कि आप जानते ही हैं, और घड़ी की सुइयां जो है वो इशारा कर रही हैं कि अब इस महफिल को समेटने का वक्त आ चला है। पर जाते जाते एक अपील जरूर जहन में रखिएगा, दहेज नहीं, बेटी को उसका सम्मान दीजिए, उसे पढ़ाकर इस काबिल बनाइए कि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और शान से कहिए कि हम बेटी वाले हैं और हमारी बेटी ही हमारा सबसे बड़ा मान सम्मान है। तो दिल का फसाना तो यही खत्म होता है, लेकिन कहीं आप जाइएगा नहीं, क्योंकि 10 बजे न्यूज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगी एक और बेहद जरूरी बात लेकर FM रेनबो 107.1 FM पर। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए उनके नाम ले लेते हैं। राहुल शिंदे थाने से आज हमारे साथ जुड़े हैं, और उनकी ही पसंद का ये गाना था प्रेम रोग फिल्म का जो हमने प्ले किया, और कार्यक्रम उन्हें पसंद आया। विजेंद्र घटोला कोला से प्रमोद चिंचोलकर और पंकज महोड, और ये है श्रीपाद कुलकर्णी नांदेड़ से, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है। और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, और अंजू अंधेरी इससे तो हमें सुन ही रही हैं, रवि अघाने कल्याण से हमें सुन रहे हैं, महेश बोहरा और मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से, शुभलक्ष्मी मस्तकार, भागेश आर पाटिल, गणेश पाटिल वाड़वन से।

प्रमोद कारखानिस पुणे से, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य राउत भी जुड़े हुए टिगरे पाड़ा से, और स्नेहा वर्ली से, अवधेश मौर्य जौनपुर से, आप सभी का हमारे साथ इस घंटे में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो भाई, जब भी आप अपनी बेटियों की शादी करने के बारे में सोचते हैं तो दहेज देने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। आधी जिंदगी वो आपके साथ और आधी जिंदगी किसी दूसरे के घर में जाने वाली है। खुशियों से भरी रहे, ऐसी ही कामना करती है आपकी दोस्त माला। फिलहाल इस घंटे से इजाजत, और ये गाना जो है जसपिंदर नरूला की आवाज में, जानम समझा करो से, ये गाना चलते चलते बनता है इस घंटे से, लेकिन कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:30। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुंबई के केईएम अस्पताल ने स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान पुरुषों के मृत शरीर के बारे में एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार से की टिप्पणियों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अस्पताल के डीन डॉ हरीश एम पाठक ने शुक्रवार को कहा कि संबंधित टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्यवाही उचित नहीं है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान के अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, ये है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। कार्यक्रम नमस्ते भारत सुनो सुनो ऐ दुनिया आवाज़ लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त माला। सुबह के 10:02 और ठीक 40 सेकेंड हो चले हैं। देश के दिल की धड़कन के साथ शुरू हो चुका है ये शो, आपका अपना पसंदीदा नमस्ते भारत। और आज का हमारा ये स्पेशल आर बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं उस खतरे की जो दबे पांव हमारे घरों में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनाएंगे ये खूबसूरत सा नगमा, सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि आज किस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं।

तो भाई दिल में हलचल अगर है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बनता है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं सुनो सुनो है दुनिया वालों नमस्ते भारत में, वो ये है कि भाई जो हार्ट अटैक है वो एक छुपा हुआ खतरा है और इसके बारे में ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी सतर्कता जो है वो हमें बरतनी चाहिए। और एक दौर था जब हम ये सोचते थे कि दिल की बीमारियां तो बुढ़ापे की दस्तक हैं, लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि हार्ट अटैक अब उम्र बिल्कुल भी नहीं देखता। 20 और 30 साल के नौजवान जो जिम जाते हैं, हंस खेल रहे हैं, अचानक इस छुपे हुए खतरे का शिकार हो रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिल की सच्चाई जानने के लिए? क्या हम सच में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं इस सेहत के सही होने से? तो सोचिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं आप इस नंबर पर 8657661071 8657661071। आपकी दोस्त माला है लगातार आपके साथ। नमस्ते भारत, सुनो सुनो है दुनिया वालों।

जी हाँ, दिल तो बच्चा है जी। मेडिकल साइंस भी कहती है कि हमारा दिल जो है वो बहुत वफादार होता है। वो अचानक धड़कना बंद नहीं करता, वो पहले कई बार सिग्नल देता है, हमें आवाज भी लगाता है। सीने में भारीपन, बिना वजह बहुत ज्यादा ज्यादा पसीना आ जाना, या बाई बाह में यानी लेफ्ट आर्म में दर्द हो, ये वो अलार्म है जिन्हें हम एसिडिटी या थकान कहकर टाल देते हैं। और आज माला आपसे कह रही है कि अपने दिल की इस पुकार को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये वो छुपे हुए इशारे हैं जो अगर वक्त रहते समझ में आ जाए तो एक हस्ती खेलती जिंदगी को उजड़ने से बचाया जा सकता है। तो भाई, इन इशारों को बिल्कुल मत भूलिए और अपने दिल की सुनिएगा, और साथ ही ये गाना भी सुनिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: ध्यानधारणा, योगसाधना ही भारतीय संस्कृतीने जगाला दिलेली एक अनमोल देणगी आहे. हीच ध्यानधारणा जगभरातल्या विविध प्रकारच्या हिंसा थांबवण्यासाठी नेमकी दिशा देईल, अशा ठाम विश्वासाने जगभरात कार्यरत असलेले केमिकल इंजिनिअरिंग, पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग ते इनर इंजिनिअरिंग असा प्रवास अनुभवणारे मंदार आपटे आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आपल्याला भेटायला येत आहेत FM गोल्ड वाहिनीवर.
6: मेंटल हायजीनसाठी आपण काय करतो दर दिवशी? आपण काय करतो त्याला साधना म्हणू शकतो आपण. धन म्हणजे वेल्थ, साधना म्हणजे माझं वेल्थ, जे कोणी चोरून घेऊ शकत नाही.
5: आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष संवाद जरूर ऐका. दिनांक 19 आणि 20 जून रोजी सकाळी 11 वाजता 100°

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम नमस्ते भारत, सुनो सुनो है दुनिया वालों। और आज बात कर रहे हैं इस खूबसूरत से दिल की, जिसे हम हमेशा मुस्कुराना सिखाते हैं और कभी कभी इसे थोड़ा परेशान भी हम कर देते हैं। वैसे बहुत सारे मैसेजेस दिल से लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं। पंकज महोड अमरावती से हमसे जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई दिल की किसी भी समस्या को हल्के में ना ले, और अगर कमज़ोरी फील हो रही हो, थकान हो, एसिडिटी हो, तो ज़रूर जाँच करवाएं। और प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे हैं साथ में, वो कह रहे हैं कि थक गया हूँ मैं, खुद को दिलासा देते देते दिल अंदर सिर होता है, मुस्कुराते मुस्कुराते एक अजीब सी कश्मकश है इस नादान दिल में, आवाज दे रहा है कोई पर पास नहीं, पैर थक कर थमने की जिद करते हैं अक्सर, मगर जिम्मेदारियां पीछे से आवाज दे देती हैं। सुकून की तलाश में निकले थे हम घर से बाहर, अब घर लौटने की हिम्मत भी नहीं बची। और वैसे उन्होंने ये इसलिए लिखा है कि आज जो बॉर्डर मूवी है उसको रिलीज हुए 29 साल पूरे हो गए हैं, और उसकी पसंद का वो फिल्म का एक गाना भी वो सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, तो वो गाना हम जरूर आपके लिए प्ले करेंगे। लेकिन पहले और मैसेजेस ले लेते हैं। शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हार्ट अटैक जो है बहुत अचानक से आने वाली बीमारी है, इसलिए इस से बचना चाहिए और खास तौर पर अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। राम प्रजापति कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए और योगा करना चाहिए, हर इंसान को अगर दिल को तंदुरुस्त रखना है तो ये सब तो जरूर करना ही चाहिए वाकई में। और इब्राहिम भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आप कैसे हैं। तो भाई हम इब्राहिम, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं आप भी बताइए। अंजू अंधेरी इससे हमसे जुड़ी हैं, और वो योगा, मॉडरेट एक्सरसाइज, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट खाने पर और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ FM रेनबो को सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि संगीत जो है वो ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना देता है। दिन का सुना हुआ पहला गाना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो वो गाना पूरे दिन जब हम सुन लेते हैं सुबह सबसे पहली बार, तो वो पूरे दिन हमारी ज़बान पर बना रहता है। इसका मतलब है दिल और दिमाग दोनों संगीत को एक्सेप्ट करते हैं बहुत प्यार से। विजेंद्र खटोल अकोला से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और फिरोज सिगनपुरिया भी हमें सुन रहे हैं, प्रमोद चिंचोलकर भी हैं हमारे साथ, और धनंजय नवी मुंबई से, बाबा दादर से प्राची शिंदे भी सुन रही हैं, कार्यक्रम को एंजॉय कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ही बोलना है, आप भी सुन, आपको भी सुनना है मुझे, आपका अपना मंच है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं इतने प्यार से, तो क्या आपके परिवार में या आपके आसपास कभी किसी ने इस साइलेंट खतरे का सामना किया है, आपने उससे क्या बात की, क्या सीखा, या फिर भाग दौड़ भरी इस मुंबई लाइफ में दिल को महफूज रखने के लिए आप क्या सावधानी बरत रहे हैं, मुझे कॉल कीजिए 8657661071 पर, यानी कि 8657661071 पर, और बताइए कि भाई आप अपने दिल की इस पुकार को हल्के में लेते हैं और या फिर इसे सीरियसली लेते हैं। अपनी कहानी साझा कीजिए, अपने सवाल पूछिए और हमें कॉल कीजिए FM रेनबो 107.1 FM पर। तब तक मैं आपको सुनाती हूँ एक और खूबसूरत सा नगमा।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम चल रहा है और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं और फोन लाइंस यानी मैसेजेस आपके हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच माला की डायरी से दिल से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी सावधानी जो है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, हर सुनने वाले के लिए है। बड़े ध्यान से सुनिए, सीधे मेरे दिल से आपके दिल तक पहुँचेगी। सुनो सुनो दुनिया वालों, गाड़ी की सर्विसिंग तो हम टाइम पर करवा लेते हैं, लेकिन इस 300 ग्राम के कुदरती इंजन का क्या? आज से 3 वादे कीजिए खुद से। पहला, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, चाहे आप खुद को कितना भी फिट क्यों ना समझें। दूसरा, नमक और तनाव दोनों की मात्रा अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए। और तीसरा, दिन के 24 घंटों में से कम 20 मिनट सिर्फ अपने शरीर को दीजिए, चाहे वॉक कीजिए या योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, पर कुछ ना कुछ वर्कआउट आपको जरूर करना चाहिए। ये माला की डायरी से निकली है, दिल से दिल तक आप तक पहुंची है। ये जरूरी 3 चीजें जरूर ध्यान रखिए और याद रखिए, आपके दिल की धड़कन से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपके पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी होती हैं। सिखाने, समझने और अपनों की फिक्र करने का ये सिलसिला आज के लिए फिलहाल आपकी दोस्त माला के लिए थम रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं थमेगा क्योंकि एफएम रेनबो तो आपके साथ बना रहता है। उम्मीद है आज मस्त मुंबई से लेकर नमस्ते भारत, सुनो सुनो ये दुनिया वालों तक का ये सफर आपके दिल को छू

गया होगा, फिर होगी मुलाकात ठीक किसी ना किसी दिन किसी ना किसी समय पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी रहेगी लगभग सेम एफएम रेनबो 107.1 एफएम। तब तक के लिए अपने दिल का ख्याल रखिए, समाज की रूढ़ियों को तोड़िए और मुस्कुराते रहिए, और मेरे को दीजिए इजाज़त। लेकिन मैं इजाज़त तब ले पाऊंगी जब आप जो है अपने दिल का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और हमने आपके दिल का ख्याल रखा है। प्रकाश शिंदे जी, आपकी पसंद का गाना हम ज़रूर बजाने जा रहे हैं। चलते चलते ये आखिरी गाना, और सभी लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं उन सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपना प्यार अपनी दोस्त माला के पास पहुँचाते रहिए एफएम रेनबो के माध्यम से। फिलहाल इजाज़त, बने रहिए इस खूबसूरत नगमे के साथ। बॉर्डर फिल्म के 29 इयर्स पूरे हो गए हैं, इसलिए ये गाना प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, प्राची शिंदे की फरमाइश पर, और मेरा भी पसंदीदा गाना है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो। समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गाँवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। और समाचार में आगे, पुणे पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगा जा रहा था।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुंडवा थाने में कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और समाचार के अंत में, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने कहा है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए इसी फ्रीक्वेंसी पर।

रमैया वस्तवैया से सुना आपने ये गाना, आतिफ असलम श्रेया घोषाल की आवाजें थी, प्रिया सरैया ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हो गए हैं आप। सैटरडे की इस मॉर्निंग ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए हैं तो व्हाट्सअप करके हाजिरी लगाइएगा 8657661071, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सो जी, ब्रेक फ्री में जैसे कि देखिए, जब हम ब्रेक फ्री इस शब्द को सुनते भी हैं ना, तो अक्सर हम सोचते हैं डर, सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी और उन लिमिटेशंस से ब्रेक फ्री होने के बारे में है जो हमें अपने गोल्स अचीव करने नहीं देती, या हम खुद को अपने गोल्स अचीव करने से रोक देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है ना, ये हमें मोटिवेट करता है ब्रेक फ्री प्रोग्राम कि हम ग्रो करें, कॉन्फिडेंट बने और अपने बेस्ट वर्जन बन सकें। आज हम इसी थीम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज के साथ जोड़ रहे हैं, और वो कॉज क्या है उसके बारे में मैं ज़रूर जल्द आपको बताऊँगी, लेकिन अभी के लिए आएँ आपको सुनाते हैं हर दिल जो प्यार करेगा का ये टाइटल ट्रैक। समीर ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम अक्सर कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी या सोसाइटी जो हम पर कुछ लिमिटेशंस डालती हैं उन सब से ब्रेक फ्री होने की बात करते हैं। आज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है जो हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो है एल्बिनिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और एल्बिनिज्म

के साथ जीने वाले लोगों के अधिकारों, सम्मान और इंक्लूजन को प्रमोट करना है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान जो है वो रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का हकदार है, चाहे उसकी अपीयरेंस कैसी भी क्यों ना हो। अल्बिनिज्म के साथ जो है जीने वाले लोग अक्सर मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करते रहते हैं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दूसरों से अलग दिखते हैं।

में जो इतने सालों से हम मिथ्स सुनते आए हैं अल्बिनिज्म के बारे में, क्या वो सच हैं, और उस वजह से हम जो इससे अल्बिनिज्म से जूझ रहे हैं उनके साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार रख रहे हैं हमारी जो है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, उसको ठीक करना और इस अल्बिनिज्म के बारे में और जानकारी हासिल करना, यही इस दिन का मकसद है, उद्देश्य है। इसके बारे में मैं आपसे और बात करूँगी, और अगर आप भी अल्बिनिज्म वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको भी इस तरह की चीज़ें सुनने मिलती हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए तो आए वो गाना सुनाते हैं जो हर किसी से इश्क करने का पैगाम दे रहा है कि सारी नफरतों को तोड़ दो, हमें एक दूसरे से अलग दिखने के लिए, अलग होने के लिए, या यू नो लोगों को ये बताने के लिए कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो इंसान को अलग कर सकती है, लेकिन ये जो प्यार है, मोहब्बत है इंसान का इंसान से, वो अगर आप समझ लें तो कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप आखिर में कहेंगे कि हम बंदे हैं बंगिस्तान के, इश्क करेंगे। सना महापात्रा, अभिषेक नलवाल, शादाब फरीदी की आवाज़ें हैं, पुनीत कृष्णा ने इसे लिखा, राम संपत की कॉम्पोजिशन।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गिव मी सम सनशाइन, ये गाना आपने सुना थ्री इडियट्स इस फिल्म से. सूरज जगन एंड शर्मन जोशी की आवाज़ें थी. स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शंतन मोहित्रा की कॉम्पोजिशन. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप और जी ब्रेक फ्री. इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे थे अल्बिनिज्म के बारे में. इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है आज, और किस तरह से अल्बिनिज्म जिन्हें होता है उन लोगों को कई सारे जो है वो मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है, और कई लोग जो है वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और किस तरह से जो है हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो एम्पैथी, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट

रिस्पेक्ट पर बनी हो इसकी कोशिश की जाए। जब हम डिफरेंसेस को जज करने के बजाय सेलिब्रेट करते हैं, तब हम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करते हैं जहां हर इंसान जो है ख़ुद को वैल्यूड और सपोर्टेड महसूस करे। अवेयरनेस और काइंडनेस के छोटे छोटे एफर्ट्स भी जो हैं वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तभी जो है इस तरह के ख़ास दिनों में जो है उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है और उनके बारे में लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि कई बार लोगों को जानकारी ही नहीं होती, फिर वो पुरानी रिवायत के चलते कि हाँ नहीं इसको ये इस तरह का इसका कलर है, मतलब इसको कोई तो बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए, इस तरह की कई सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं एल्बिनिज्म को लेकर। लेकिन उस जो व्यक्ति है उसको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। तो इसीलिए आज जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि लोगों को पता चले। आज के प्रोग्राम के तहत जो है हमने यही कोशिश की। और याद रखें कि असली फ्रीडम जो है वो तब मिलती है जब हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ हम एक्सेप्ट करें। तो आइए स्टीरियोटाइप्स से ब्रेक फ्री करें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दें और एक ज़्यादा जो है इंक्लूसिव और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं मैं आप हम सब मिलकर, ताकि ये हो, ये एल्बिनिज्म हो या कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो हमसे अलग दिखता हो, उसको जो है हम इंसान ही समझें और उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें, बल्कि क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, है ना। तभी हम इस तरह के स्टीरियोटाइप्स से जो है वो ब्रेक फ्री हो पाएंगे। और इसी के साथ ब्रेक फ्री को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें 12 बजे आप न्यूज़ हेडलाइंस सुनेंगे, उसके बाद 12:02 पर म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो जाएगा। तो आपने बने रहना है इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM ड्रीम बबर, बिकॉज वी आर म्यूज़िकली योर्स। अभी के लिए आपको सुनाते हैं ये वाला गाना आ रहा है और फिल्म है धर्म करम, मुकेश जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुर साहब ने इसे लिखा, आर डी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। वे कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में ये बात कही। और समाचार में आगे, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 13(1) के तहत कृषि जैव विविधता पर एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस कमेटी का पुनर्गठन 1 साल की अवधि के लिए किया गया है ताकि उससे जुड़े मामलों के संरक्षण और लाभ साझाकरण पर एक्सपर्ट सलाह दी जा सके। और समाचार के अंत में, प्रवर्तन निदेशालय ने कल मुंबई में रिलायंस अनिल अंबानी समूह के 2 पूर्व अधिकारियों को PMLA के तहत गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने सतीश सेठ और गौतम दोषी की ट्रांजिट रिमांड ली है। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज़ें और ये गाना आपने सुना दबंग इस फिल्म से। जलीस शेरवानी ने क्या ही खूब इसे लिखा और साजिद वाजिद की बेहतरीन कॉम्पोजिशन से सजा ये गाना था। और इसी गाने के साथ शुरू हो गया है म्यूज़िक कैफ़े। हाँ जी, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप और ये जो कॉम्पोजिशन थी वो साजिद वाजिद की थी, राइट। और आज हमारे कैफे में ना फ्रेंड्स का एक ग्रुप आया हुआ है और उनकी डिमांड है कि इस पूरे घंटे में सिर्फ साजिद वाजिद के कंपोज किए हुए और उनके गाए हुए गाने ही उन्होंने सुनने हैं, फ्रेंड्स ने सुनने हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि हम साजिद वाजिद ने जितने गाने कंपोज किए हैं वो एक से बढ़कर एक सॉन्ग आपके लिए प्ले किए जाएं। अब ये दोस्तों की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, हमारे कैफ़े में आए हैं तो हम पूरी कैसे न करें, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो चलिए आज सारे जो गाने हैं एंजॉय करते हैं हम उन गानों को जिन्होंने फ्रेंडशिप, लव और मस्ती के हर मूड को जो है और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। ऐसे गाने साजिद वाजिद के कंपोज किए हुए म्यूज़िक कैफ़े में आज प्ले होंगे। तो आपने बने रहना है इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर। सभी के लिए पार्टनर फिल्म से आ रहा है ये गाना, सोनू निगम, कुणाल गांजा वाला, श्रेया घोषाल, सुज़ी क्यू की आवाज़ें, शब्बीर अहमद ने इसे लिखा एंड ऑफकोर्स साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप और जी सैटरडे की इस दोपहर ही म्यूजिक कैफे में आपको वेलकम करते हैं. आज हमारे कैफे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स का कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप आया हुआ था और उनको सुनने हैं आज कैफे में सिर्फ और सिर्फ साजिद वाजिद के कंपोज किए हुए ही गाने. तो हम वही सॉन्ग्स आप तक पहुँचा रहे हैं और क्या ही

से बढ़कर एक गाने कंपोज किए हैं साजिद वाजिद ने, और आपके मैसेजेस भी मुझे बता रहे हैं कि आपको बड़ा मजा आ रहा है वो गाने सुनकर। साजिद वाजिद की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई ऐसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स दिए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। उनके म्यूजिक में एक है ना अलग ही फ्रेशनेस और एनर्जी होती है ना, जो सुनते ही मूड एकदम लाइट कर देती है। तो इसी तरह के गाने, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स और

0: क्या बात है, इतना तो प्यारा गाना, इतनी प्यारी आवाज़ें, क्या कहने इन आवाज़ों के। वाह मन्नता, आपने ये गाना सुना, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें थी। हीरोज़ इस फिल्म से जलीस शेरवानी साहब ने इसे लिखा एंड साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन से सजा ये गाना था। और आज म्यूज़िक कैफ़े में 107.1 FM रेनबो आपने ट्यून इन किया है, यहाँ म्यूज़िक कैफ़े ओपन है। और आज हमारे कैफ़े में कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप आया था और उनकी डिमांड थी कि सिर्फ आज पूरा एक घंटा जो है, जितना ये हमारा म्यूज़िक कैफ़े जो है 12 से 1 के बीच में ही सिर्फ ओपन रहता है, तो उस बीच जो है इन्हें सुनने थे, इन फ्रेंड्स को सुनने थे साजिद वाजिद की ये जो जोड़ी है और उनके कंपोज किए हुए गाने। तो आज हम वही प्ले कर रहे हैं। साजिद वाजिद की जोड़ी ने ना बॉलीवुड को कई ऐसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज भी जो है वो, मतलब आप कितने ही कोई उनका कई साल पुराना भी गाना उठा लें, उसकी वो जो एनर्जी, जो फ्रेशनेस है वो अभी भी बरकरार है। रोड ट्रिप हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, साजिद वाजिद सॉन्ग्स जो है हर ओकेजन को और भी यादगार बना देते हैं। शायद इसीलिए उनके गाने आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितना उनकी रिलीज के वक्त होते थे, है ना। और फ्रेशनेस देखिए आप, अभी भी आपने जो गाना सुना ऐसा लगता है कल परसों ही बस रिलीज हुआ हुआ हो। और क्या ही प्यारा गाना, एक और प्यारा गाना जो बहुत ही यू नो इसकी मेलोडी बहुत ही खूबसूरत है और जो कह रहा है डोंट से अलविदा, जो कि हम आपको ज़रूर थोड़ी देर में सुनाएंगे, क्योंकि अलविदा तो खैर हम आपको वैसे भी अभी इतने जल्दी नहीं करने वाले हैं, आपके रिक्वेस्ट आर से पहले कैसे जा सकते हैं उससे पहले, इस गाने से पहले जो है एक छोटा सा स्पॉट आएगा, उसको प्ले करते हैं, उसके बाद ये गाना आ रहा है। मैं और मिसेस खन्ना इस फिल्म से, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुजैन की आवाज़ें हैं, जुनेद वसी एंड सुजैन डे मल्लो ने मिलकर इसे लिखा, साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन। अभी के लिए एक स्पॉट, उसके बाद वो गाना, ठीक है। आकाशवाणी FM रेनबो
1: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

क्या बात है, मतलब एक से बढ़कर एक गाने कंपोज किए हैं साजिद वाजिद ने, उदित नारायण अलका याग ने की आवाजें, समीर ने इससे लिखा, मुझसे शादी करोगी इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और म्यूजिक कैफे ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे कैफे में आज फ्रेंड्स का एक ग्रुप आया है और उनकी फरमाइश पर वो कह रहे हैं कि आज म्यूजिक कैफे में पूरा एक घंटा जो है साजिद वाजिद के कंपोज किए हुए गाने ही प्ले किए जाएं, और बस हम उन्हीं की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। और म्यूजिक की दुनिया में कुछ मेलोडीज ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी खास लगने लगती हैं, और साजिद वाजिद के कई ऐसे सॉन्ग्स हैं उन्हीं मेलोडीज में से जो है उन गानों का शुमार होता है जो वक्त के साथ साथ और ज्यादा निखरते हैं, जो सुनते ही है ना पुरानी यादें और अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपको याद आने लगते हैं। और शायद मेरे ख्याल में यही एक रीज़न रहा होगा ये जो फ्रेंड ग्रुप है उन्होंने साजिद वाजिद के गानों को चूज़ किया। आज हमारे कैफे में भी बहुत ही मज़े का माहौल हो गया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उन्हें भी मज़ा आ रहा होगा। आए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जिसे भी साजिद वाजिद ने ही कंपोज़ किया है, इश्क इन पेरिस से आ रहा है ये गाना, सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजें, जलीस शेरवानी साहब ने इसे लिखा, कुड़ी दी कुड़िया दी कुर्दी।

0: I cannot sleep.
1: मतलब म्यूजिक कैफे में साजिद वाजिद के कंपोज किए हुए गाने प्ले हो रहे हो और शनिवार भी हो और ये गाना प्ले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। मैं तेरा हीरो से सुना आपने ये गाना, अरिजीत सिंह शालमली कुलगड़े की आवाजें थी, कुमार ने इसे लिखा एंड साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन। और फ्रेंड्स का जो ग्रुप आया था आज हमारे कैफे में, उनकी स्पेशल डिमांड को पूरा करते हुए हमने साजिद वाजिद के कुछ अमेजिंग सॉन्ग्स आपको सुनाए म्यूजिक कैफे में। जल्दी फिर मुलाकात होगी कैफे में आए कस्टमर्स की डिमांड पर किसी खास एरा किसी खास कंपोजर के गानों के साथ। तो इसी के साथ म्यूजिक कैफे का शटर डाउन करने का वक्त हो चला है, लेकिन इस प्रोग्राम से जाते जाते और एक बहुत ही प्यारा गाना साजिद वाजिद की ही कॉम्पोजिशन है, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, शान एंड श्रेया घोषाल की आवाज में आएगा ये गाना तेरी मेरी कहानी इस फिल्म से। और आपको बता दें 1 बजे आप छत्रपति संभाजी नगर से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:05 पर आपका चहीता प्रोग्राम रिक्वेस्ट आर हिट एंड हॉट शुरू हो जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं आपके लिए, उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, तभी आपने जो भी गाना रिक्वेस्ट किया होगा वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन का आंसर और वो गाना भेज सकते हैं 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और जितने भी लोग जो है म्यूजिक कैफे में अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देते हैं उनके गाने हम प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट आर जो है वो 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, अभी के लिए आए आपको सुना

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। और इसमें जो है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर देते हो और उस क्वेश्चन के आंसर के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देते हो 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपसे पूछना ये है कि देखिए आप, हम इतने सारे आरजेस को तो सुनते ही रहते हैं रोज, है ना, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए आरजे बन जाएं तो आप किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगी? ठीक है, इसका आपने जवाब देना है। अगर आप एक दिन के लिए आरजे बन जाएं तो आप किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, इसका जवाब और इसके साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज दें 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए रेडियो की बात हो रही है, आरजे की बात हो रही है, तो आए सुनाते हैं रेडियो। ट्यूबलाइट इस फिल्म से आएगा ये गाना, कमाल खान गाएंगे, अमित मिश्रा साथ देंगे, अमिताभ भट्टाचार्य से लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन।

0: मजामा।
1: किम छो मजा माँ। और आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के भी बड़े मज़े आ रहे हैं हमें। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो।

शर्मीन संग शामिल हैं आप, और हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब मैं जो क्वेश्चन लेकर आती हूँ उसका आप आंसर देते हो और उसके साथ ही उस आंसर के साथ अपना गाना हमें भेज देते हो, ठीक है। सो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए आरजे बनाया जाए तो आप किस टॉपिक पर बात करेंगे, इसका जवाब आपने हमें देना है और उसके साथ ही जो है अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देनी है। हमें विजेंद्र जी ने अकोला से लिखा है कि मैं अगर आरजे बन गया तो मैं आपकी फरमाइश प्ले कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू, बहुत ही सही करेंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि हमेशा जो आरजे होता है वो आप लोगों के ही सॉन्ग रिक्वेस्टें प्ले करता है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी आप भी हमारी गाने की रिक्वेस्ट पूरी कर दें। मेहर अरोरा कह रहे हैं कि मुझे एक दिन के लिए अगर आरजे बना दिया जाए तो मैं तूफान की गति से सभी श्रोताओं के नाम शामिल करूंगा जिनकी अक्सर सभी श्रोताओं की शिकायत होती है। मैं तो सभी के नाम तूफान की गति से ना सही लेकिन नाम तो ले ही लेती हूँ, है ना। मेहर अरोड़ा और उनकी फैमिली ने हमें मैसेज किया है, हमें मैसेज आया है हितेंद्र दास जी का, वो भी कह रहे हैं कि किसी गाने में शामिल कर लीजिए, वो हमें आसाम से सुन रहे हैं। फिर हमें मैसेज आया है, इनका नाम है हरजिंदर छिंदा जी और इनकी फैमिली भी हमें सुन रही है, वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं आरजे बनने के लिए मुंबई आ जाना चाहूँगा एटलीस्ट 3 दिन के लिए ही सही। क्या बात है, आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, मैं एक एक करके उन्हें रीड करूँगी। कुछ के गाने प्ले हो सकते हैं, कुछ के टाइम की कमी की वजह से शायद ना हो, लेकिन मैसेजेस मैं ज़रूर जो है आप लोगों के रीड करूँगी। अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं, आप लोगों की फरमाइश पर आ रहा है ये गाना, शान एंड श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, हाउसफुल 2 से आएगा ये गाना, समीर रंजन ने इसे लिखा, साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन, क्या बात है।

लकी अली बिंजो की आवाज़ें और गोरी तेरी आंखें इस एल्बम से सुना आपने ये गाना. असलम ने लिखा, लकी अली को साजिद अली की कॉम्पोजिशन. आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप और हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में हम आपकी पसंद के गाने प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो तभी हो रहे हैं जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको एक दिन के लिए आरजे बना दिया जाए तो आप कौन से टॉपिक पर जो है वो बात करना चाहेंगे. और बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंसर्स आप हमें दे रहे हैं और उसके साथ ही अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं 8657661071 8657661071. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और संजय दर्शन जी का हमें मैसेज आया है, वो कहते हैं कि मुझे बहुत लंबा अनुभव है रेनबो सुनने का, एक प्रोग्राम तो मैं कर ही सकता हूँ. टूटे दिल के टॉपिक पर गाने, शायरी और सबके विचार रख सकता हूँ. और उन्होंने कहा कि पहले भी आप और आपकी और सोनाली के साथ एक जो प्रोग्राम आया था उसमें आपने हमारे कई सारे लिसनर्स को लिया था ऑनर, उसमें मैं भी था बिल्कुल. फिर प्रणव शिंदे जी हमें कहते हैं कि उन्हें अगर क्योंकि उनका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है

रेडियो के लिए, तो अगर वो कहते हैं कि संगीत और ख्वाबों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जीवन में संगीत का महत्व और दूसरा विषय है ख्वाब, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और उसी के साथ ही उन्होंने ख्वाबों से जुड़ा ही एक गाना रिक्वेस्ट किया है, वो हम बहुत जल्द प्ले करेंगे। आपको बता दें 1:30 बजे आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे, और 1:40 पर फिर दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। हिट एंड हॉट आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट है, और आपकी ये इतने इंटरेस्टिंग से जो आंसर्स आप हमें दे रहे हैं वो सारा कुछ 1:40 को दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। 1:30 बजाएगी मराठी में न्यूज। अभी के लिए प्रणव शिंदे की रिक्वेस्ट पर आए, आपको सुनाते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं। गुप्त फिल्म से आ रहा है ये गाना, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, विजू शाह जी की कॉम्पोजिशन। मेरे ख्वाबों में तू

राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट पर सुना आपने ये गाना अलबेला। इस फिल्म से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज़ें थी, रानी मलिक ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और जी हिट एंड हॉट। इस प्रोग्राम में आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टें तो प्ले होती ही हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, फिर उस सवाल का आप जवाब देते हो और उसके जवाब के साथ ही अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देते हो, ठीक है? इस तरह का कुछ ये प्रोग्राम करते हैं हम। सो आज मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको चांस मिल जाए एक दिन के लिए आरजे बनने का, तो आप कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना चाहोगे? तो हमें राकेश माथुर जी ने लिखा था कि वो वेरियस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनका फिल्मी गानों में जो इस्तेमाल कैसे हुआ है, उस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप लोगों के आंसर्स से ना मुझे खुद को भी काफ़ी सारे आइडियाज मिल रहे हैं शोज के लिए। और अंजू ने अंधेरी ईस्ट से हमें मैसेज किया है। अंजू जो है वो डॉक्टर हैं, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, तो वो कहती हैं कि अगर मुझको एक दिन के लिए आरजे बनने का मौका मिल जाए तो मैं हेल्थ की बात करूंगी, हेल्थ के रिलेटेड, के कैसे फिट एंड फाइन रहा जा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है अंजू। और हमें मैसेज आया हुआ है, इतने सारे आपके मैसेजेस का जो तूफान उमड़ा है उसमें से, हाँ जी, अजय सखरे जी इंदौर से हमें लिखते हैं कि मैं एक दिन के लिए अगर आरजे बन जाऊं तो मैं बुजुर्ग लोगों का जो वृद्ध आश्रम में किस तरह से उनको परेशानियों और समस्या का सामना करना पड़ता है उस पर सुझाव दूंगा मैं। ये बड़ी बात है, बातें जो है वो प्रॉब्लम जो है हर कोई उसके बारे में बात करता है, लेकिन उसके बारे में, उससे निपटने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे निपटने के जो सुझाव देना है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो आरजे करता है। फिर हमें क्षितिज ने मैसेज किया है, वो कहते हैं कि अगर मुझे एक दिन के लिए आरजे बनने का मौका मिल गया तो आई टॉक अबाउट मिस्टीरियस थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। सो और भी कई सारे मुझे आपके मैसेजेस आए हैं जो मैंने रीड करने हैं। गाने तो खैर एक घंटे में कितने ही प्ले हो सकते हैं, है ना? तो लेकिन आप लोगों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक से बढ़कर एक आप लोगों ने गाने भी जो है वो रिक्वेस्ट करे हैं। तो आए सुनाते हैं अगला गाना, बर्फी फिल्म से आ रहा है ये गाना, निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज, आशीष पंडित ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और रेनबो के आरजेस भी मुसाफिर हैं, एक आता है दूसरा जाता है फिर एक नया आरजे आता है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल थे आप। हाँ जी, मेरे जाने का वक्त हो चला है। ये गाना आपने सुना अपनापन इस फिल्म से, लता जी, रफ़ी साहब की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन। और आज हिट एंड हॉट में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको एक दिन के लिए आरजे बना दिया जाए तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे, और अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट आपने हमें भेज देनी थी। अजय सकरे जी की रिक्वेस्ट पर आपने सुना ये वाला गाना अभी जो मैंने प्ले किया, और एक से बढ़कर एक हमें जो है मैसेजेस आए थे, आप लोगों के आंसर्स आए थे। प्रमोद जी, विजेंद्र जी अकोला से, राकेश माथुर, प्रकाश शिंदे जी, क्षितिज, संदीप कुमार जी, और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर और स्कूल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। संजय दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिरोज सिगनपुरिया जी कहते हैं कि वो पॉल्यूशन को लेकर बात करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रणव शिंदे जी, महेश बोरा जी जो है वो कहते हैं कि मैं आपसे कुछ समय के लिए पहले तो ट्रेनिंग लूँगा और आपसे एक्टिंग सीखूँगा। एक दिन के लिए एक्टर बनाने की बात नहीं हो रही, एक दिन के लिए आरजे बनाने की बात हो रही है। मुकेश कश्यप और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, अजय सकरे इंदौर से, हिरमानी वर्मा और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, मेहर अरोरा श्रीनगर से, शुभ लक्ष्मी जी हमें सुन रही थी, और वो कहती हैं कि अगर मैं आरजे बन जाऊँ तो ओल्ड फिल्म्स की बात करूँगी, उनके गानों के बारे में बात करूँगी, बहुत अच्छी बात है। अंजू का मैसेज था, हरजिंदर जी, दिग्दर्शन कविता, हितेंद्र दास, पंकज मोहन, अभिजीत गवानकर, गुलाब गायकवाड़ जी, रजनीकांत पाटिल जी, और खुशनुमा गुरमीत सिंह जी ने हमें मैसेज किया था, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का मैसेज आया था, और हमें मैसेज किया था किरण शर्मा, नरेंद्र शर्मा ने, और सुनील पाठक, उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, अशोक पाटिल जी हमें वर्ली से सुन रहे थे, और हमें मैसेज आया था गणेश का, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, विजय महोबी और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, श्रेय रावत और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, राहुल शिंदे थाने से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन सभी के मैसेजेस हमें आए थे। कई सारे लोगों के गाने प्ले हुए हैं, कहीं के नहीं हुए हैं, तो जाते जाते आप सभी के लिए ये गाना आ रहा है DDLJ से, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, लता दीदी की आवाज, आनंद बख्शी साहब ने से लिखा, उदित नारायण साथ देंगे। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, मैं आपसे मिलूंगी मंडे की शाम, हाँ जी, 5 से 8 का जो हमारा शो होता है, मेरी और आपकी मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम्स के बारे में अगर बताया जाए तो आपको बता दें, 2 बजे आप अंग्रेज़ी में न्यूज़ सुनेंगे, 2:15 बजे हिंदी में न्यूज़ आएगी, और 2:30 बजे मराठी प्रोग्राम सलाह दोस्तों बोलू का ही। इस प्रोग्राम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर। अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामईन।

0: to the U.S. over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing three Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of three-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
1: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
0: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये

0: आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 5:02 हो रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी. सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार.

शाम का ये वक्त, हालांकि जो गर्म हवा है वो हमारा पीछा तो छोड़ नहीं रही, लेकिन फिर भी शाम ढलते ढलते थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और फिर ऐसे लगता है कि हाँ अभी और थोड़ा सा इंतज़ार बाकी।

हैं, लेकिन जब वो फुहारे गिरेगी और ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठंडक से भरपूर हो गया है, तब शायद हमारा दिल, दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार, ये सब जो आसपास की गर्मी से झुलस चुके हैं, वो भी ठंडक से पा जाएंगे। देखिए ना, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है उसका हमारे विचार पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे आचार पर कितना असर पड़ता है। जिंदगी के ये सारे जो पहलू हैं, एक एक कर अलग अलग मौसमों में, अलग अलग ऋतुओं में सामने आते हैं, हमें छूकर हमसे कहते हैं कि देखो ऐसा भी होता है। तो जिंदगी कितनी नवनवायमान रूप में हमारे सामने आती है ना।

0: जिंदगी में दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, बहुत कुछ होता है कहने के लिए। हमें ऐसे लगता है हम बहुत कुछ कह सकते हैं, अपनी कहने की वजह से, अपने जुबान से निकले हुए शब्दों की वजह से हम लोगों को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं, लोगों से अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने अपनों को और अपने प्रेम का इजहार करा के उनके साथ जिंदगी भर यूं ही खुश रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये जो अल्फाज हैं, जो आपके अरमान हैं, जो ये अल्फाजों के ज़रिए इनका आधार लेकर निकलते हैं, ये कभी कभी किसी किसी को दुखी भी करते हैं, क्योंकि इनका आधार भी कुछ होता है, आपके मन के एहसास, जो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत आहत भी हो जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि हम आहत होते जा रहे हैं किसी के बदले हुए स्वभाव से, किसी के बोलने से, लेकिन फिर जब ये सारी बातें होती रहती हैं तो मन में कहीं कहीं ये ख्याल भी आना चाहिए और कभी कभी आता भी है। अगर आपका मन एकदम छरहरा है, पाक साफ है, पारदर्शी है, जैसा बोगे वैसा पाओगे, जैसा स्वभाव आप परिवर्तित करते हो, जैसा आप बोलते हो वैसा ही आपको परिवर्तित रूप में मिलता है। तो इसीलिए जिंदगी कभी कभी ये भी सिखाती है कि आप जिस प्रकार से बर्ताव करोगे, जैसा आपका स्वभाव है, आपको प्रतिफल भी वैसे ही मिलेगा।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

शाम के 5:44 हो रहे हैं और लव यू जिंदगी कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं। कितने ही अनगिनत पहलू होते हैं इस जिंदगी के। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार, पता है आपके औरा मंडल के भी अनुसार, इस जिंदगी को हमेशा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसे परखने की कोशिश करते हैं। औरा मंडल के बारे में तो आजकल बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। आपके आसपास एक ऐसा रंगों का वलय है जो बहुत महीन होता है, जिसे आप निकट आँखों से नहीं देख पाते, और वो रंगों का जो वलय होता है वो आपके स्वभाव को तय करता है, आपके शख्सियत को, आपके अस्तित्व को तय करता है। और मिलजुला कर ये सारी बातें जो हैं वो और आपकी ज़िंदगी, इनमें एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही रिश्ता, एक अलग ही नाता पैदा होता है। बहुत सी बातें अनदेखी होती हैं दोस्तों, जिन्हें शायद हम नहीं देख पाते, सोच नहीं पाते जिसके बारे में, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसके हमें एहसास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सारी बातें हमें ज़िंदगी के साथ निरंतर रूप से जोड़े हुए रखती हैं।

वो कहते हैं ना कि आप जिंदगी कितनी लंबी जी रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि आप जिंदगी कैसे जी रहे हैं। और इस जीवन के लाइफ स्पैन पर या फिर जीवन की जो लंबाई है उस पर ध्यान देते देते कहीं कुछ आपसे छूट तो नहीं जा रहा, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़िंदगी बस प्यार करने के लिए है, इसके साथ हमारा जो जुड़ाव है वो निरंतर है, और इस निरंतरता को बड़े प्यार से सहेज कर रखना हमारे हाथ में ज़रूर है।

किशोरदा के गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का लव यू जिंदगी कार्यक्रम बस यहीं तक ही। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अंदाज़े बयां माया के साथ। सुनते रहें

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 6:15 हो चुके हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाजे बयां. सभी श्रोताओं को एक बार फिर से माया का प्यार भरा नमस्कार.

दोस्तों कहते हैं हमारे जो अरमान होते हैं, हमारे जो एहसास होते हैं, वो बहुत छरहरे होते हैं। उनका भी एक अपना रूप होता है, उनका भी अपना एक अस्तित्व होता है, उनका भी एक व्यक्तित्व होता है। पर उसे देखना, उसे हूबहू शब्दों में उतारना बहुत मुश्किल है। अगर किसी शब्द का चयन करके आप किसी भावना को शब्दों में उतारना चाहते हैं और आपको ऐसे लगता है कि नहीं, वो बात नहीं बन पा रही, तो वो बिल्कुल वैसा ही शब्द, बिल्कुल परफेक्ट शब्द कैसे चयन किया जाए, ये भी एक बहुत सुंदर कला है। मतलब शब्द ऐसे चयन किए जाएं जिनकी वजह से बिल्कुल वही विवक्षित भावना, वही एहसास सामने को जब सामना जब सामने वाला जब पढ़े तो उसके हृदय में वो इंगित हो जाए। ऐसे बहुत कम बार होता है। चले लिखने की तो छोड़िए, जब हमें कोई कहता है कि इस वक्त तुम्हें कैसे लग रहा है, तो शायद ही हम बिल्कुल सटीक शब्द में इसका वर्णन कर पाते हैं। और जब शेर व शायरी और ऐसे खूबसूरत गज़ल, गीत, कविताएं हम सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारे दिल को कोई छू रहा है, हमारे दिल को कोई पढ़ रहा है। ये वही तो ख्यालात है, ये वही तो अंदाज है, ये वही तो एहसास है जो हमारे दिल को छू रहे हैं। पर ये कैसे कोई पढ़ रहा है, यही तो वो सुंदर कला है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

शाम के 6:44 हो रहे हैं और अंदाज़े बयां कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद प्रस्तुत होगा कार्यक्रम हम तुम, और इसमें आपकी फरमाइशें हम पूरी करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। आपको करना ये है, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो फरमाइश सुननी है, उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम है, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं क्या करना है आपको इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी फरमाइश मतलब गाने के बोल, फिल्म का नाम और आपका नाम भेजना है।
2: मुझे चुन लिया।
1: ये जो फरमाइश है, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों में ये युगल गीत सुनना चाहते हैं पंकज मोहर जी अमरावती से।

चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत खूबसूरत हुई है और आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी फरमाइश हम तक पहुंचना शुरू हो चुका है। अगली जो फरमाइश है राम प्रजापति जी की है, वह सही से है। बरसात फिल्म का कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

अगले जो फरमाइश है वो देवता फिल्म से है और बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है, लता मंगेशकर और किशोर दा का गाया हुआ। और ये जो फरमाइश है हमें भेजी है फिरोज सिंगापुरिया जी ने, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

विजेंद्र घाटोल जी ने अकोला से अगली फरमाइश हमें भेजी है। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता का गाया हुआ ये गीत वो सुनना चाहते हैं।

दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद 7:30 पर डेली अपडेट्स जो कि आप हमेशा 7:30 बजे सुन रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सुन पाएंगे।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पुणे से राकेश माथुर जी की। शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ तराना फिल्म का ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

0: जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है इंदौर से। अजय साखरे जी ने ये फरमाइश की है, लॉफर फिल्म का मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

0: आजकाल दिशा स्कीमच्या टेली लॉ न्यायबंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदेविषयक मदतीसाठी टेली लॉच्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबरवर तसेच www.tele-law.in या वेबसाईटवर माहिती मिळवू शकता.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

दोस्तों कार्यक्रम में दो फरमाइशें और हम ले सकते हैं क्योंकि 7:50 होने को है, तो दो फरमाइशें अंतिम हम ले रहे हैं। अगला जो गीत आप सुनेंगे प्रकाश शिंदे जी की फरमाइश है, ये उन्हें चलते चलते फिल्म से गुमशुदा ये गीत सुनना है, सोनू निगम और साथियों का गाया हुआ। उन्होंने हमें ये भी भेजा है लिख कर के, चलते चलते फिल्म को आज बराबर 23 साल हुए हैं, 13 जून 2003 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो चलिए प्रकाश जी, आप बहुत अच्छे अच्छे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें भेजते रहते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत आपको हम सुनाएंगे इस अभी तुरंत ही, और उसके पश्चात जो कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा वो है चेतन कुमार जी की फरमाइश, गया बिहार से मुझसे शादी करोगी फिल्म से ये गीत वो सुनना चाहते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की ये दो अंतिम फरमाइशें आप तक पहुंचाते हुए ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करेंगे, और इसके बाद रॉक विद जॉक फली के साथ आप सुन पाएंगे। अब माया को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: All right, that's a bit of Air Supply over there with All Out of Love. That's their biggest number one hit, celebrating 50 years of Air Supply. 76 is when they released their first single and were heard on the radio for the first time ever. You know, the duo is celebrating their birthday as well. Hi, folks, who are out there? Keep listening in to the number one station in this city. And that's Akashwani's Rainbow Channel. Coming up right now is the news in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And then we'll be back with more fab music right here on this station.
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में

0: सांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े।

0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indoor Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के

बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-318-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी। हाँ जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं रंगे महफिल। और हमारी महफिल में कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बहुत से साथी हमारे दोस्त शिरकत कर रहे हैं और आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं एक प्यारे से नज़्म के साथ। और कहना चाहूँगा इस बात पर कि बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा जब बहुत दिनों बाद हमें तू मिलेगा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है इस प्रोग्राम के ज़रिए। हाँ बिल्कुल, तो इसी बात पर मुझे कुछ याद आया तो मैंने फरमाया। और आपके दिल की बात है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम रंगे महफिल।

हाँ जी सरकार, तो फिर मुलाकात तो हुई गई हमारी, और अब बात हो जाए, जज्बात हो जाए जो आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से लिखते हैं कि उजड़े शहर में उल्फते मकान ढूंढता हूँ, नामे वफा के गुमशुदा निशान ढूंढता हूँ, और नादा मैं भी हूँ कितना, तू देख मेरे यार, जो इन पत्थर की बस्तियों में आज भी एक इंसान ढूंढता हूँ, एक इंसान ढूंढता हूँ अपने निराले अंदाज के साथ हमेशा की तरह। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महफिल में बने रहने के लिए। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकिहार, दर्शना बाजार, जिला अररिया।

बिहार से लिखते हैं, सारा शहर था अंधेरों की पनाहों में, मगर मेरी पलकों पे तेरी याद का पहरा निकला। चांद भी हार गया रात की तन्हाई से, और आंखों से मेरे दर्द का दरिया निकला। याद की धूप ने हर जख्म चमकने ना दिया, वक्त ने लाख बुझाया मगर मुझे बुझने ना दिया। चांद हर रात मेरे घर की छतों तक आया, तेरा चेहरा मेरी आंखों से उतरने ना दिया। गहरी बात है दिल की, और यही कह सकता हूं कि जब दिल से अल्फाज निकलेंगे तो जज्बात जज्बात तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अल्फाज अपने जज्बात हम तक पहुंचाने के लिए। और जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से। बने रहिएगा महफिल में, अभी और भी बढ़िया अच्छे मीठे नगमे आपके लिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का प्रोग्राम रंगे महफिल में। और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, आपकी यादों के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, और लिखा है आगे, यहां सबको मिले प्यार ये जरूरी तो नहीं, हो किस्मत पर इख्तियार ये जरूरी तो नहीं। जो कहते हैं साथ मरने की, जो खाते हैं साथ मरने की कस्में, हो साथ जीने की, जीने को तैयार हो जरूरी नहीं। हाँ, ये बात भी कह सकते हैं कि अपने अपने अल्फाज, अपने अपने जज्बात। तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, कह रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब। तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, वो जो गुजरे लम्हे याद आते हैं। बिल्कुल याद आएंगे तो फिर निकल कभी नहीं पाएंगे, और इसी को कहते हैं दिल का कहीं ना कहीं यादों में बस जाना, जो होता है हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी।

मैं नवलू वर्क फ्रॉम मलपणा गोवा से संदेश भेज रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी प्लेलिस्ट, और एक गज़ल की फरमाइश की है दोस्त। वो गज़ल मेरी प्लेलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो यकीनन आपको पसंद आएंगे। आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, नगमे दिल को बहुत सुकून दे रहे हैं। प्रेमचंद प्रेमी जी, बने रहिएगा, और भी बेहतरीन नगमे आपके लिए अभी आएंगे। कहते हैं कि अब और कितनों से दिल लगाओगे और यूं ही कितनों के दिल दुखाओगे, देखना किसी रोज किसी की खातिर तुम भी तरसते ही रह जाओगे। बेवफाई का आलम कुछ यूं दिल को छुआ या दिल को लगा कि दिल से बस आवाज आती है, करते हैं हम दुआ उनके लिए पर ना जाने क्यों निकलते शब्द कुछ और हैं। आप भी हो गए हमसे बेवफा, हमको यह एतबार ही नहीं होता, हम तो कोसते हैं अपने आप को ही, काश आपसे प्यार ही नहीं होता।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ 1000 खर्चा, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है।

0: का कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का प्रोग्राम रंगे महफिल में, और दिल की बातें कुछ आ रही है तो क्यों ना साझा कर ली जाए। थैंक यू सर, दिस इज़ वेरी नाइस गज़ल टच टू माई हार्ट, जो पंकज उदासव वाली ना, मेरे भी बहुत क्लोज है, बहुत प्यारी गज़ल है वाकई में। एन्जॉय ये खूबसूरत गज़ल भाई पंकज उदास जी। प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से, जी बिल्कुल यही बात मैं अभी कह रहा था। खूबसूरत आवाज़ जो होती है और अंदाज, वो कभी भी दिल से जुदा नहीं होते, और मैंने उनको इसीलिए आज डेडिकेट किया। हमारे बीच ना होकर भी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। नमस्कार जी, नाम छाया रानी, गांव नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आपका कार्यक्रम हम 9 बजे से ही सुन रहे हैं, आपने 9 बजे भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चंद लाइन आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिल ऐसे मुबतला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफ़ेद हो गई 20 साल में। मतलब कह नहीं सकता कि इतनी प्यारी सी लाइन जो है बहुत दिल से निकली है कह सकता हूँ। और जी ये तो मेरे दिल से निकल रही है जो आपने भी लिखा है। दिल से शुक्रिया आपका इतने बेहतरीन गाने सुनाने के लिए और बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरे साथ जब बने रहते हैं तो दिल से शुक्रिया भी निकलता है, और बस आप लोगों के बिना ये महफिल तो अधूरी रहेगी ना। तो आपका सबसे पहले दिल से शुक्रिया। तेरी जुदाई का गम उठा रहे हैं हम, हंसते चेहरों में भी आंसू छुपा रहे हैं हम। तेरे बिन सूना सूना है ये दिल का आशियां, रोज यादों के दिए फिर से जला रहे हैं हम। रात भर चांद भी तन्हा सा नजर आता है, अपनी तन्हाई को किससे बता रहे हैं हम। वो जो कहता था कभी साथ ना छोड़ूंगा तेरा, उसके वादों का जनाजा उठा रहे हैं हम। क्या बात है, जो कि हर दसना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम जी। वो झील वो नदियां वो हवाएं, एक तरफ

उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ। वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए। नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। क्या बात है। कस्बा गुन्नौर यूपीज़ फारूक अली खान साहब, दिल के ऐसे जज्बात कभी कभी आप लोगों से जब मैं मुखातिब होता हूँ, जब इस प्रोग्राम में मिलता हूँ, तो कहते हैं ना, देखिए हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। और वो जो लफ्ज़ होते हैं ना, जो ये जो शब्द होते हैं हमारे, हमारे जज्बात को हमारे अंदाज में बयां करते हैं। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।

आपके आने से हर वो दिन यादगार बन ही जाता है। आज भी दावत थी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जब भी जो दावत हो हमें याद जरूर कीजिएगा और समझिएगा हम आपके साथ ही हैं। और तकरीबन वक्त हो गया है आपसे विदा लूँ, मिलेंगे 20 तारीख को। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसो एडब्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ओर से ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रहधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत के दौरान मिले फीडबैक पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और मुश्किल

इलाकों में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया था। अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बड़ार ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:06 हो चुके हैं और अब शुरू होता है जीरो आर शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो ऐसे ही आप गानों के बीट्स पर झूमते रहिए और नॉनस्टॉप गानों का मजा लीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक का मजा ले रहे हैं। ऐसे ही गाने सुनते रहिए और झूमते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक जीरो आर शो में। टाइम हुआ है रात के 12:51 और फिर रात के 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन तब तक ऐसे ही बॉलीवुड के हिट म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए और झूमते रहिए।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यू ऑलरेडी नो बेबी, सुनो टुकराओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप, और आधी रात हो रही है, यानी आधी रात के 1:06 हो रहे हैं। 14 जून रविवार की ये रात है और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा लेंगे हर रोज की तरह। तो ऐसे ही आप गानों को सुनते रहिए और बस अपनी गानों की दुनिया में खो जाइए।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: शुरू हुई है। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस टाइम हुआ टाइम है रात के 1:29 और आप सुन रहे हैं सुहानी रात शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। ऐसे ही आप गानों का मजा लेते रहिए और झूमते रहिए। और अभी सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही प्यारा गाना।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस समय हुआ है रात्रि के 1:48 और सुहानी रात शो में आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक। रात के 2 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा बिना रुके गानों का सिलसिला। ऐसे ही गाने सुनते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल

0: नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पूरे इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है और इसका फाइनल अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और आधी रात के 2:06 हुए हैं। आज 14 जून यानी संडे की रात है और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज, यानी इस पूरे घंटे आप सुनेंगे नॉनस्टॉप हिट बॉलीवुड के गाने। तो बस ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और अपनी धुन में ऐसे ही झूमते रहिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन

0: करेंगे भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान

कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया है। फीफा विश्व कप 2026 के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान

0: दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।